एक्सका एफएम कौआ वोलंगोय पंगम तनगु छु औंगो प्रोग्राम को सबुजी से का के रादु के कवे तु का खै से पंगवा गुसी दे वोलंग जि चान तनगु इमा थमो अले को प्रोग्राम तो तु गुंगो वोलंग को सबुजी से का के वोलंगो कोना ता गुसी दे क्वांग खन गु सुपा के आख मिनिटे मोंग तोन वोलिंग नुते मोजी तबा ए अकोन दे कनु से कवे तु खै से पंगवा तनगु छु औंगो वोलंग ngkwe sa ko ji ji ka kon ta ke wala ma ji cha kwe ngai de ge kanu se ma se de ge khasune ka wajing ngau tu le pon ngau se wa ji ge mta chong wala ngkwe sa ko ji ge mong ma so ten du ta ngau wala.